जी हाँ, तू ही मेरा सहारा है। और शब्बीर जेकब साहब मुझे पूछ रहे हैं, मैंने कहा ये कितना खूबसूरत, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। मैसेज आया है मेरी प्यारी दोस्त शायदा की तरफ से, जो कहती है आई जस्ट ट्यून्ड इनटू योर प्रोग्राम, माशाल्लाह एब्सोल्युटली अमेजिंग, योर वॉइस इज सो वार्म, कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ नूर, मे अल्लाह पुट बरका इन योर वर्ड्स एंड लेट देम टच एवरी हार्ट दैट इज लिसनिंग। एंड She says, so proud of you, you were born for this. Shaida pa jazakallah khair for your beautiful words. And I just need your duas, lots of duas. Jazakallah khair for always being there for me, for always saving me. Jazakallah khair. Agla kalam hai, ya Rab, mujhe maaf kar de.

एक मुलाकात, जी हाँ, बहुत ज़रूरी है वक्त निकाले अपनों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए, क्योंकि वक्त आजकल कीमती हो चुका है और लोगों के पास वक्त नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल ज़िंदगी बहुत अजीब सी हो गई है, बीमारियाँ और अचानक हादसे, मौत, तो पता ही नहीं चलता है वक्त का। और मेरी प्यारी दोस्त ज़ुबैदा अली, इसहाक, शरीफा पारकर सब ये प्रोग्राम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और शुक्रिया आपकी दुआओं का और आपकी हौसला अफजाई का। रशीदा मौज़ा ने फिर से मैसेज भेजा है, एक बर्थडे मैसेज, कहती है शी वॉन्ट्स टू विश बर्थडे टू रिहाना, अ फ्रेंडशिप ऑफ 38 ईयर्स एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, मे अल्लाह ग्रांट हर एवरीथिंग दैट्स बेस्ट इंशाल्लाह। एंड फिर उन्होंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया है, टू माय डियर आंटी सादिका भाना जैफर, अ बिग शुक्रन, जजाकल्लाह खैर फॉर एवरीथिंग एंड फॉर द अमेजिंग बर्थडे सरप्राइज, इट ट्रूली वाज अ बिग सरप्राइज, मे अल्लाह ताला रिवॉर्ड यू अबंडेंटली फॉर एवरीथिंग यू डन फॉर मी एंड माय डॉटर एंड फॉर ऑल द गुड यू ऑलवेज डू। अ बिग शुक्रन ऑल्सो टू जुल्फा जैफर, अब्दुल रहमान जैफर एंड देयर सन मोहम्मद रईस, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू ऑल अबंडेंटली, लव यू ऑल सो मच। और ये अगला कलाम जो मैंने लिया है वो है तेरे बगैर। कल जब मैंने रशीद आपा को देखा तो उनके आँख में आंसू आ गए, और अपने लेट हस्बैंड शकूर मोज़र को लेकर वो बहुत रोए। और ये रिश्ते ही ऐसे कि जब हमारे अपने हमसे दूर चले जाते हैं तो हमें समझ नहीं आती हम क्या करें, ये अल्लाह के फैसले होते हैं लेकिन हमें उस पर राज़ी होना चाहिए। तो ये अगला कलाम तेरे बगैर।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गजल, ये गजल सेगमेंट में हमने ली थी, लिंकत आरा की आवाज में है, तेरे बगैर। और मेरी प्यारी जो बसंती बहन है, और जो कहती है मुबारक टू द एंटायर रेडियो 786 ऑन द 31 ब्यूटीफुल ईयर्स, 31 ईयर्स ऑफ दीन लव कवाली एंड कम्युनिटी, व्हाट एन अमेजिंग जर्नी। यू आर नॉट जस्ट अ रेडियो स्टेशन, यू आर द हार्ट बीट ऑफ केप टाउन। May Allah bless you with many more years of success. We love you, Radio 786, from a loyal listener in Cape Town. Jazakallah khair, aapka. Aur hamare, main jaise keh rahi hoon aur kehti rahungi ki dua kare hamare liye. Agla kalam, koi apna nahi raha. Baz waqt mujhe khud ko aise lagta hai ki sab hote hue bhi koi nahi. Jagjit Singh ki awaaz mein koi apna nahi raha.

0: जो दिल के पास था
1: वो अपना नहीं रहा।
2: बेशक बेशक कोई अपना नहीं रहा, और जो हमारे दिल के पास थे, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, ऐसे लगता है सब हमसे दूर, बहुत दूर चले गए। ये वक्त ही ऐसा है, और मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये कलाम एक्चुअली AI जनरेटेड था, और ये जगजीत सिंह की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये पता नहीं AI जनरेटेड, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, नाम कुछ लिखते हैं, तो मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी। ये कलाम जगजीत सिंह की आवाज़ में नहीं था। अगला कलाम, जगह जी लगाने की नहीं है ये दुनिया।